0: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
1: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बढ़िया।
0: आज सिमी भैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते थानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्रीओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

0: श्रावण
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तो हाड़ी गड़ी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
5: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
4: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
6: यार। की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
4: आज सिम्मी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
6: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
4: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
7: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। ऑर्बिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स दे ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au।
8: सोना चाहिदा
9: भरोसा चाहिदा
8: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है।
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते।
3: सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
5: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

हाँ जी, तुसी सुन रहे सी पाश पाश दी जिंदगी ते उसियां रचनावां बारे। आस करदी हां कि तुहानू अज दा शो पसंद आया होएगा, क्योंकि कवि कदे मरदे नहीं, ओ लोकां दी याद विच वस जांदे नहीं।

0: चल भी हुण तेरी बारी।
1: ओ नार तेरे बापू ने कहा सी जे तू एक कम दोबार तो कीता ना तेनु जानो मार दू।
2: ए हुण किसे दे पियो तो डर के थोड़ी गाणा
1: तेरा अपना ही पियो है।

0: इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
1: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़िया।
0: आज सिमी पे एनजी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उना दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 04332825 2 0 4 3 2 8 0 2 5 2 3 0 4

0: दर्पण
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
4: सोना चाहिदा
5: भरोसा चाहिदा है
4: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
3: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
6: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
3: आज सिम्मी पहन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
6: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
3: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au
7: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 0390-8665 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
3: किचन ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਲ ਲੱਗਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀਜੇ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਕਦਮ ਕਲਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਟੋਨ ਬੈਂਚ ਟਾਪਸ ਫॉर ਕਿਚਨ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਵੈਨਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਂਡਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਰਸਿਲਨ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਗੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਸਟੋਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ 0440-545-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
8: मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां कॉन्टैक्ट 0423-102-900 ईमेल sales@ozlintels.au
3: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au
9: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
10: सूरज देवता
9: की मतलब
10: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
9: मैनूं नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
10: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802552 ते 04332802

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।
0: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुश खबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स, असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।

किशन फाकिर, मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से। जलंधर रेडियो पे थे वो, मैं वहां से गाता था। फिर यहां आके मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शायर का जो होता है वो फाकिर साहब का था, उसी में से ये नज़्म है।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: बलजीत, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਚਲੀਏ
5: ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
4: ਓ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
6: ਜੇਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਨੇ ਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਬੇਬੇ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਸ਼ੀਨ ਪਾ ਕੇ ਟੌਰ ਮਾਰਦੀ।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042 रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332 80252 04332 5 2 3

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने।
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते।
3: सिंक स्मैश रिपेयर,
1: 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
4: 04-93-280-252
5: याद रखो 9077-9733
4: VY Immigration and Education Consultant
5: हर कदम तुहाडे नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
5: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवां स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
6: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देने लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423102900। ईमेल sales@ozlintels.au।

Kumar vaag fakira, ha vaag main fakira, ha vaag main fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई इन्हें रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोग, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ के अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना. कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने क्यों, क्योंकि साढ़े माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले वधावे तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिद तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट जी. वो अंदर उन्होंने की किया, उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नूं कहा जी कि यह ना अज इस सीजन दे टिकट्स हैगियां $15 दियां मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नूं $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना $15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ, ठीक है भाई. फिर बाद जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सी जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले दिता 15, दूसरे 13, तीसरे 8, इन्हों इन्ने इन्ने दिया टिकटा वेचिया सेम नंबर ऑफ शोज़ एको थिएटर के अंदर देखने लिए वक्ो वक्री फिल्मा दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जोड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटा खरीदियाँ उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाए कि असी बहुत पैसा खर्चिया है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मन्या जदों उन्होंने दसिया कि हुण ये सारी बोरिंग फिल्मां ने, ये फॉरन लैंग्वेज दी फिल्मां, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी है ना. तो वह लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित होंगे कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे मैं शायद अपने लाइफ के कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देवा, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे है. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दिते होंगे है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देवा. इधर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वह पॉइंट ही ये होंगे कि किसी चीज़ को छड्डन की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैं पता कि मैं ये करता रहा तो 10 रुपए का नुकसान है, पर जे मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है, तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा. नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो उन्होंने एक होर क्या एक्सपेरीमेंट, यह है जी स्टडी 2. यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੋਸ ਐਵਰਜਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 13 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣੋ।

0: ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ Mustang, brand new demo ਤੇ quality pre-owned vehicles, trade-in ਅਤੇ finance options ਵੀ available। ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ Ford ਦਾ test drive ਕਰੋ, business fleet ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, vehicle experts Tim Forbes ਜਾਂ Corey ਨਾਲ, radio ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਓ 3 ਸਾਲ ਦੀ free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
0: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप, टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-655 और विजिट tireforce.com.au।
5: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
7: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
8: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
3: यार उना दा डैंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
8: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया, ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
1: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनेयां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तुहाडे नाल।
2: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
5: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
2: आज सिम्मी भैन जी आए सी, उना ने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
5: अच्छा, असी भी उन्हें कॉन्टेक्ट कर दें फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी कर दे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
6: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
7: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
6: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
8: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
9: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
10: सूरज देवता
9: की मतलब?
10: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
9: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
10: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
11: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
12: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
11: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
10: सिंह स्पेशल रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंह स्पेशल रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
13: Insurance.

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा।
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
0: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने,
2: पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
3: सूरज देवता
2: की मतलब?
3: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
2: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-494 ते। सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते

0: तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
2: आज सिमी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।
4: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tirefors.com.au।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानू उडीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड जरा होली

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी का मसला, कोई इमिग्रेशन की समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हटे ले कर देने। बंसल लॉयर्स, तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
4: हाँ जी रेडियो।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: बेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। की होया इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार? की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पैन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
4: बलजीत ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
5: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
4: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते
6: Yo, it's Apache Indian and Jazzy B again. Are we set the trend?

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: सोना चाहिदा
3: परोसा चाहिदा है
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्कॉटलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाओ देने उन्हें दे सपने आदा एक मजबूत कर House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वर्षों के तजुर्बे नाल थनु दिन देने 100% fixed price guarantee within industry leading 24 month price lock आज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 जाते 0433-280-252 ते हाँ जी

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au
0: ready set go chadston ford dandenong road te tuhanu udik reha hai ford ranger ranger super duty everest te sadabahar mustang brand new demo te quality pre-owned vehicles trade in ate finance options we available aao te apni navi ford da test drive karo business fleet lai gal karo vehicle experts tim forbes ya cory nal radio hanji de hawale nal pao 3 saal di free service चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
2: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
2: आज सिमी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
3: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au

कि थानू इस तरह ही लगे कि भाई कोई प्रॉब्लम जे मेरे मन दे अंदर मेरे जहन दे अंदर कुट कुट के पई हुई है ना तो वो यूनीक नहीं है वो एक सिस्टमैटिक बिहेवियरल इशू है ते बेसिकली सस्ती थेरेपी जे मैं सही गल कहां सो सस्ती थेरेपी लैन लई आपां अज इकट्ठे हो चुके हैं उम्मीद करदा लास्ट टाइम जदों साडी गल हुई सी उस तो लैके हुण तक थोड़ा दिन थोड़े शामा सारा कुछ वधिया ही निकलिया होएगा होपिंग यू ऑल आर डूइंग वैल तो जे मैं अपनी गल करा तो मेरा भी काफ़ी वधिया माहौल चल रहा जी पिछले दो तीन हफ्ते वट हैव आई डन वैल ख्याल नहीं आ रहा बई कुछ खास हाँ बस कॉन्सर्ट सी सरताज का मेजर तो उ जरा वेख्या इट वॉज़ गुड तुम भी जे देखा तो उत्थे जे सीगे तो जरूर दसना थोड़ा किस तरह का रहा एक्सपीरियंस साढ़े ना जरूर गलबात करना बाकी आज दे शो नू आपां थोड़ा अगे वधाने आ थोड़े ना थोड़े थोड़े गाने भी सांझे करांगे जान लगे एक प्यारी जी कहानी भी थानू एक दसांगे कोई रियल परसनैलिटी तो रिलेटिड पर पहला आपां अज गल करांगे अज दे कंसैप्ट लई सो क्लास अपनी कॉपी पेन लैके इकट्ठे हो जाओ तो अज असी गलबात करन जा रहे हैं जिस टॉपिक दे बारे उस टॉपिक दा नाम है संक कॉस्ट फैलेसी क्या खूबसूरत नाम है संक कॉस्ट फैलेसी अच्छा एदा नाम जे सुने हैं जो उस तो थोड़े जहन दे अंदर की आंदा मैं इस करके थोड़ा बफर ले रहा कि थोड़े जहन च की आंदा है तुसी एक ए भी सोचो कि व्हाट डू यू थिंक कि इज गोइंग ऑन इन योर हेड व्हेन आई स्पीक कि यार सी संक कॉस्ट फैलेसी बारे गलबात करनी है ना जी बहुत बेसिक जी चीज़ है पर बहुत जरूरी चीज़ है टेक्निकल डेफिनेशन जी इस चीज़ की है कि जी द टेंडेंसी टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन समथिंग बिकॉज ऑफ प्रीवियसली इन्वेस्टेड रिसोर्सिस ईवन वैन कॉन्टिन्यूइंग इज नो लोंगर द बेस्ट डिसीजन जी बिल्कुल जी एदा मतलब यह हुंदा है कि जी आपां अपना हाथ ना रोक पाना अपना मन ना रोक पाना किसी चीज़ ते बार बार इन्वेस्ट करन तो भावें साडा टाइम होवे भावें साडा एफर्ट होवे भावें साडा मनी होवे क्योंकि असीं पहले भी उहदे ते इन्वेस्ट करदे आ रहे हैं तो सानू पता है कि ये खूह खाते जाना है कि किसी काम नहीं आनी यह चीज़ जे भावें वह किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होवे भावें किसी दे नाल थोड़ा कोई आपसी रिश्ता होवे या फिर किसी इदा दे सर्कल या ग्रुप के अंदर तुसी किसी ऑर्गेनाइजेशन दे नाल जुड़े हो जिन्हां लई तुसी एक्सट्रा एफर्ट पुट करदे हो तुसी पुट करते रहोंगे तद तक जब तक थानू टेंडेंसी थोड़ी रोकती नहीं है खुद नू थानू दिस रहा होएगा कि यार ये जो मैं कर रहा ना घाटे का सौदा कि इतने शायद मेरी वो वाली वैल्यू नहीं पैनी इतने जेडे मैं पैसे लगा रहा ना बार बार मेरा जो फलान दोस्त हैगा या फिर रिश्तेदार है उन्होंने मैं जी आर्थिक सहायता करदा या फिर मैं उन्होंने सहायता नहीं तो अजकल भी बहुत चलता ना कि यार तू मैनू थोड़े पैसे दे दे तो जे मेरी गलबात बन गई तो मैं तेनों वध करके मोड़ांगा है ना वो तुम भी जानते हों अंदर खाते कि यार होना कुछ भी नहीं है इतों वापसी कोई नहीं आनी पर क्योंकि तुम पहले भी देंदे आ रहे हो तो तुम हूँ भी नहीं रोकोगे सेम गल आप होर भी काफ़ी चीज़ों के उपर लगा सकते हैं तो वो जी सेम गल रिश्त भी लगा सकते हैं कि हो सकता थोड़ा भरा भैन होन थोड़ी मैरिज च हो सकता यंग ऑडियंस जो सुन रही है थोड़ा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकता थोड़े दोस्त यार मित्र हो सकते हैं कि हो सकता तुसी उन्होंने बहुता दो अपने वालों अपना मन अपनी इंटलैक्चुअल पावर अपनी हेल्प तुसी करते रहो पर थानू कभी वापसी ना मिले कभी रेसिप्रोकेट ना हो तुसी ता ही करते हो कि तुसी करते आ रहे हो ता भी तुसी हुन भी नहीं रुक पा रहे जबकि थानू दसदा कि इहदा कोई फायदा नहीं है ना पिछले सीजन कहता वा क्या बात है पिछले शो के अंदर जो आप गलबात की ना तो यही क्या कि जिन्हें भी इधर कंसैप्ट ने ना यह सुने सुनाए ने हर किसी को पता है कि कोई अलग चीज़ नहीं निकलूगी ये अंदर जो मैं बोलूँगा पर पॉइंट यह है कि इनू आप साइंस बैक्ड गल करनी है सो साइंस बैक्ड गल यह होंगी कि जे तुसी सोर्स दस दो कि भाई ये वाला रिसर्च पेपर लिखा गया इस बारे यह गलबात हुई है तो फिर थानू एक स्टैंप लग जाता थोड़ी उस सोच के उपर कि कोई इन्नी रौले वाली गल नहीं है भाई कि दिस हैपन्स टू एवरी वन एटलीस्ट एवरी वन दैट वी नो है ना सो जी ये जड़ा ये उपर गलबात की है इस कंसैप्ट उपर जिदा

Kumma vaag fakira, vaag main fakira, vaag main fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई नो रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं वह क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोक, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हों सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ दे अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना, कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने. क्यों? क्योंकि साढ़े माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना, है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले को वधावे, तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है, जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा, है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिस तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट. जी वो अंदर उन्होंने किया, उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नू क्या जी कि यह ना अज इस सीजन दे टिकट्स हैगियां $15 दियां मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नू $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना 15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ, कहिंदे ठीक है भाई. फिर बाद जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नू उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नू दिता 15, दूसरे नू 13, तीसरे नू 8, इन्हों इन्ने इन्ने दियाँ टिकटा वेचियाँ सेम नंबर ऑफ शोज़ एको थिएटर के अंदर देखने लिए वक्खो वक्री फिल्मा दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटा खरीदियाँ उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाए कि असी बहुत पैसा खर्चा, है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जो उन्होंने दसिया कि हूँ ये सारी बोरिंग फिल्मा ने, ये फॉरन लैंग्वेज दियाँ फिल्मा, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी, है ना. तो वो लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित होंगे कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे, मैं शायद अपनी लाइफ दे कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देव, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे हैं. जे उस ही चीज़ में पैसे घट दते हो गए, है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देव. इधर एक होर कंसैप्ट आता ओपरचुनिटी कॉस्ट कहते हैं. जो लोग इकोनमिक्स पढ़े हुए हैं, जो लोग आई एम प्रीटी मच श्योर इफ दे आर वर्किंग इन रियल एस्टेट और मॉर्गेज ब्रोकर ने या फिर इन इंश्योरेंस दे, दे वुड बी यूजिंग दैट टर्म अलॉट, क्योंकि वह पॉइंट ही यह होंगे कि किसी चीज़ को छड्डन की कॉस्ट कई बार बैटर होंगी है नुकसान नालों. कि मैनू पता कि मैं करता रहांगा तो 10 रुपए का नुकसान है, पर जे मैं नहीं करांगा तो शायद नुकसान जड़ा वो घट है. तो बैटर यह है कि मैं घट नुकसान चक लवा, नुकसान तो होना ही है दोनों केसिस. सो ये चीज़ा माइंड च रखनिया चाहिए, सही कि नहीं. अच्छा फिर दूसरे पास जो तुम देख लो, उन्होंने एक होर कढ़िया एक्सपैरीमेंट, यह है जी स्टडी टू, यदा नाम यह है जी द हाफ ईटन मील स्टडी, ठीक है. रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट के अंदर लोगों ने एक्सपेंसिव खाना दिता, ठीक है. तो एक नू कहता जी खाना 2000 का, एक नू कहता जी खाना 200 का, ठीक है. सेम फूड एंड इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड फूड, पुअर टेस्टिंग फूड सिगा,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਲਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਰੋਏ ਕਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਮੈਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ $2000 ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫੂਡ ਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਾਊਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ 200 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੋਸ ਐਵਰਜਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੂਡ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਰਜਨ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀ, ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 13 ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸੁਣੋ।

हाँ जी, मैं कृष्णा भारद्वाज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। कैसे हैं आप? लगता है आप काफ़ी समय से मुझे मिस कर रहे होंगे। दैट वाज अ वेरी पुअर जोक गाइस, इट्स ऑन मी, मेरी गलती। तो असी आ गए जी वापस, और फाइनल फाइनल फाइनल राउंड हूँ अपनी गलबात का एंड होने लगा, गलबात खत्म होने लगी है। थोड़े तो मेरे बच्चे छोटे बच्चे थोड़ा जहा समा रह गया, तो आप हुण इन्हों गल नूं अगे वधांदे होए खत्म करिए इस नूं, इस दी डेस्टिनी तक, सॉरी डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनी भी वैसे सही वर्ड सी पर चलो जो है सो है, डेस्टिनेशन तक लैके चलिए। तो जी हुण यह है कि हाउ टू को ओवरकम दिस, ये अंदर भी जी वो प्रधान हो रही दस के गए ने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल है। एंड अगेन जो तुम हजे तक मेरे नाल बने पे हो थानू पता है की करना, बट स्टिल मैं दस के जाऊँगा। सो अपने कॉपी पेन फिर तो तैयार रखो क्योंकि हुणे ही थोड़े कोल इदां दे जवाब आन लगे हैं, ठीक है जी। सो टू ओवरकम ए वाली फीलिंग, ये टेंडेंसी हटाने लिए थोनों एक डिसरप्शन लगानी पैनी है अपने अंदर, है ना, एक डिसरप्टर होना चाहिए जिस करके तुम ये काम करना हट जाओ, तुम बार बार नुकसान वालू खुद जाना रोक लो खुद, है ना। सो चार एक्सरसाइजेज दसियां जी उन्होंने, ठीक है जी। पहली एक्सरसाइज है जी फ्यूचर फोकस्ड थिंकिंग, सिंपल है। और अंदर यह जी कि समझो तुसी जो भी कर रहे हो, भावें अगेन ओ वाला पैसा इनवैसट, ओ वाले रिलेशनशिप च इनवैसट, या फिर ओ वाले चार दोस्तों च इनवैसट, जो भी इनवैसट कर रहे हो अपना मन अपना धन जो भी, तुसी ए सोचना आराम नाल शांत दिमाग नाल कि जे यह चीज़ अज तो मैं शुरू करन लगा हुंदा, जे मैं हुण तक कदी कीती ही ना हुंदी तो की मैं करदा। Ask yourself because you need to be in the present, right? So एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जी कि बशीर बद्र साहब ने क्या है कि जो गुजर गई सो बात गई, ये सेकेंड भी उन्होंने ही क्या, पर इन्होंने बेसिकली यही समझाया कि जो चला गया चला गया, जो भी इन्वेस्ट कर चुके हो वो जा चुका, नो बडी ओ यू। जे तुसी किसे नाल चंगे हो, जे तुसी किसे दा कुछ कीता ते ये थानू लगता मॉरली कि थानू वह चीज़ वापस आनी चाहिए है, पर कोई भी इस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं चकता, कोई भी कितने भी रिटन टैक्सट नहीं है कि कोई थोड़े नाल उदा ही व्यवहार करे जिदा तुसी उन्हां नाल करते हो। तो सेम गोज़ विद मनी, जे थानू लगता कि अज वह चीज़ च इनवैसटमेंट मैं जो करदा पिया मैं कदी ना कदी पैसा वापस मुड़ के आऊगा, तो इदा नहीं हुंदा। तुसी जिन्ने मर्जी पैसे अपने सुटने सुट लो, खराब करने कर लो, पर इदा कदी चीज़ा ठीक नहीं हुंदियां। फिर है जी ओपरचुनिटी कॉस्ट, जिदी मैं गल पहले भी की थी थोड़े ना, है ना, कि जे मैं यही पैसा या यही एनर्जी इत्थे लाने नालों कितने होर लगावा, इत्थे लगाने नालों कितने होर लगावा, शायद की पता बैटर आ जाए रिजल्ट, हो सकता कि बैटर थिंग्स हैपन टू मी, हो सकता कि मैनू ज़्यादा बेहतर लोग मिलन। हाँ, पहले पहले हर चीज़ थोड़ी औखी लगती है, पहले पहले नवे लोगों च दोबारा उठना बैठना विचरना औखा लगता, पहले पहले दोबारा नवी इन्वेस्टमेंट करनी औखी लगती है, नवा रिश्ता बनाना औखा लगता है ना, पर ओहो समा एक नवी चीज़ नू देना शायद जेड़ा थोड़े लिए बेहतरी कर सके, रादर दैन उस चीज़ से वो समा तो पैसा लगाना जेड़ा थानू पता है कि वो थानू सिर्फ नुकसान ही करेगा, इज़ मच बैटर। एंड जी लास्ट वाला जी अगेन फ्यूचर फोकस्ड थिंकिंग जी सी ना, ओदी नैक्सट एक्सरसाइज है, एंड यह मैंने सब तो वधिया लगी है, इसलिए मैंने लास्ट रखा सगा। ये है कि जो भी इदा का दोबारा डिसीजन लैन लगो ना, तो अज की तरीक देख लैना जो भी तरीक होएगी उस दिन की, उसनू सीधे दे सीधे 5 साल अगे लै जाना, तो कहना 5 साल बाद वाला मैं ये चीज़ नू किद्दा वेखांगा, एंड 5 साल बाद वाला मैं कि यह चीज़ करांगा, एंड कि 5 साल बाद वाले मैं नू ए चीज़ दा कोई फर्क पेगा। आई एम प्रिटी मच श्योर वी ऑल नो व्हाट द आंसर विल बी, एंड उस आंसर दे उपर एक्सरसाइज करना। एंड इस तरीके नाल इस कंसैप्ट नू जे आपां समझे हाँ, तो जे इस कंसैप्ट नाल थोड़ा जहा थानू ये लगा कि हाँ यार ये तो मेरी हल्की जी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मन मिलिया तो फीडबैक भी जरूर देना यार, है ना, कि वधिया लगा कि नहीं लगा, नहीं तो किसी और चीज़ की तैयारी कर लेंगे, बट आई बिलीव कि दिस शुड हेल्प एवरीवन। सो दिस वाज संक कॉस्ट फैलेसी, तालियां।
चलो इन्नी जी गलबात ही सी जी, थैंक यू सारी गलबात सुनने लिए। एंड जान तो पहला यह हो सकता कल कंसैप्ट बदली जान, पर जो भी तुसी कदी मेरे नाल बैठे होंगे मेरिया गल्लां बातां सुन रहे होंगे तो मैं चाहना कि मैं अपने भैन भरावां नूं वधिया वधिया गल्लां सुना के उन्हां नूं कोई अच्छा जिहा किस्सा कहानी भी जांदा होया सुना के जावां, है ना। सो लास्ट टाइम आपां गल कीती सी कि हंगामा क्यों है बरपा, जिहड़ी गज़ल उह कित्थों आई, है ना। अज असीं गल करांगे हिसाब किताब दी, ठीक है जी, कि इस दुनिया का लेखा जोखा इत्थे दा ही आ। रियल स्टोरी जावेद अख्तर साहब नाल वापरी हुई उन्हां दी ही जुबानी, ठीक है। सो ये जिहड़ी गलबात है ये कुछ साल पुरानी है, किन्ने साल पुरानी है मैं दसदा जी, किन्ने साल पुरानी है कहानी है जी 1960s या 50s दी। जावेद अख्तर साहब कहिंदे कि मैं तां ना 20-21 साल दा सीगा, नवा नवा मैं इंडस्ट्री च आया, मैनू काम मिले ना, उपरों गुरबत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गरीबी तो काफ़ी ज़्यादा गुरबत दे नाल बैठे हुए एक अनएम्पलॉयड आदमी का क्या ही हो सकता, वह भी बगाने शहर के अंदर, बॉम्बे वर्गे बगाने शहर के अंदर। तो होया ये कि जावेद अख्तर साहब ने थोड़ा जहा ना हौसला करके ये ठानी कि मैं किसी को जाके ना हेल्प मांगदा। वो साहिर लुधियानवी साहब को गए, साहिर लुधियानवी साहब उस टाइम के सब तो मकबूल, उस टाइम की वैसे आज दे भी समय दे सब तो मकबूल राइटर सीगे, ठीक है जी। वो गए कहंदे कि जनाब मैं आपको तो पता है काम वाम है नहीं है और मुझे पैसों की कुछ तंगी भी है, तो हो सके तो मुझे कहीं पर काम वगैरह हो सके तो दिलवा दें, कहीं रेफरेंस वगैरह दिलवा दें, सिफारिश वगैरह लगवा दें, मैं लिखता तो आपको पता है अच्छा हूँ। तो जावेद साहब दसते हैं कि अपने अंदाज के अंदर अपने आप को यारा दोस्तों के बैठे साहिर साहब फकीर कहते सके खुद को, है ना। सो साहिर साहब अखा नीवियां करके मूँह थोड़ा जहा जावेद साहब तो परे करे कहें कि नौजवान काम वाम का तो ऐसे है कि पता नहीं है कब है कब नहीं है, पर फकीर देखता है कि क्या करेगा, कोशिश करेंगे तुम्हें काम वाम दिलवाने का, पर ना मैंने मेज़ पर कुछ पैसे रखे हैं, तुम ऐसा करो ये पैसे अपने पास अभी के लिए रख लो, जब तुम्हारे पास हो तब वापस दे देना। जावेद अख्तर साहब थोड़ा हिचकिचाते हैं तो वह फिर तो इंसिस्ट करते हैं साहिर साहब कि कोई नहीं यार पैसे ले ला, कोई चक्कर वाली गल नहीं है कि ये पैसे जो तू लै ही जाएगा तो मतलब तेरा कोई फायदा ही होएगा, है ना। हिचकिचाते हुए जावेद साहब पैसे चकते हैं, अमाउंट कितनी है जी 200 रुपये, 200 रुपए दी अमाउंट अपनी जेब च पा के जावेद साहब निकलते हैं दोबारा वापस बंबई दी सड़कां च स्ट्रगल करन लई। जावेद साहब बाद चो हल्का जिहा काम मिलता, फिर सलीम जावेद दी जोड़ी बनती है, काम भी बहुत आंदा, मकबूलियत भी बहुत मिलती, पैसा भी बहुत आंदा। बहुत ज़्यादा पैसा आन तो बाद भी हुंदा पता की है, हुंदा यह है कि जावेद साहब कभी भी ना साहिर लुधियानवी साहब उन्होंने पैसे नहीं मोड़ते, वह मिलते रहेंगे है, उन्हों का रिश्ता बहुत गूढ़ा हो जाता, एक मेंटर ते स्टूडेंट वर्गा रिश्ता उन्होंने दोनों का सगा, पर वो हमेशा ना किसी महफिल च भी बैठे होंगे ना तो उन्होंने इस तरह मजाक कर देंगे सके जावेद अख्तर साहब साहिर साहब न कि साहिर साहब मेरे पास अभी भी आपके 200 रुपये हैं पर मैं आपको वापस नहीं देने लगा। तो अगों तो अदों तो अगों उन्होंने कह देना अपना साहिर साहब ने कि भाई मैंने कौन सा मांगे कभी है कुछ नहीं। अच्छा महफिल च बैठे लोग भी ना कि भाई कन्फ्यूज़ होने कि गल करी जाते पे 150-200 रुपये की, है ना। पर साहिर साहब का यह वड्डापन से बड़प्पन से कि उन्होंने कभी इस गल का जिक्र नहीं किया कि जावेद के बुरे दिनों के अंदर उन्होंने उन्होंने आर्थिक हेल्प की सी। कुछ साल होर बीतते हैं, साहिर साहब अपने फैमिली डॉक्टर के दोस्त के घर गए होंगे, डॉक्टर कपूर उन्होंने घर ही उन्होंने अटैक आ जाता है। जदों अटैक आंदा तो वो डॉक्टर कपूर कोशिश तो करते उन्होंने CPR वगैरह दे के रिवाइव करन दी पर असफल हुंदे आ। साहिर साहब की फौतगी हो जाती है, बॉडी लियाई जाती है साहिर साहब के घर, उत्थे जावेद अख्तर ते होर कुछ उन्होंने करीबी लोग पहुँचते हैं। साहिर साहब दी दो ही भैणां सीगियां, वो दोनों पहुँचदियाँ। फिर काफ़ी टाइम तक जावेद अख्तर साहब कहें कि उन्होंने ना हाथ जिस तरह बंद बंद सके, घुटे हुए सके,
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਉਨਕੇ ਜਬ ਉਨਕੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਹੱਥ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੱਥ ਇਕਦਮ ਠੰਡਾ ਸਨ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਆਉਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਖ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਝਾੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਵੇਦ ਜਾਵੇਦ, ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਜਾਵੇਦ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕੋਮਨ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ। ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੋ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿਆ? ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਬਤਾਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਰੁਪਏ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ ਦੈਟ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੂੰ।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: विश्व पद्धर ते तेल दी काट सानो सब नु प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी काट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। आस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वल्लों जारी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
3: हां जी

मैनू कबूल है तेरा हर दुख सुख, मैनू कबूल है तेरा हसना रोना, ते मैनू कबूल है तेरा हर ओ लफज जो बिना कहे बुलना तो बयान होंदे तेरी अख चो। साडी जिंदगी अज उस मोड़ ते है जिथे तू मैनू छड़ना नहीं ते मैं तेनू छड़ नहीं सकता, इसे करके तक है मैनू लगता प्यार मेरा।

0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: यूथ जस्टिस वर्कर दे तौर ते तुसी हिरासत विचले नौजवानां दी सहायता करोगे। ए एक सुरक्षित नौकरी है जिस विच तनखा समेत ट्रेनिंग अते तरक्की दे मौके शामिल हन। जे तुसी एक सहायक टीम नाल सफल अते संतुष्टि भरे पेशे दी भाल कर रहे हो ता यूथ जस्टिस करियर्स लिख के भेजो। Authorized by Victorian Government, Melbourne.

एक गल आखा ओ भी डर डर के दिन कटा तेरे बाजो मर मर के सोनिए नी दिल बटे लेना।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
2: हां जी रेडियो

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तों तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तों। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तों भी वध दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। हां जी।

0: कारपेट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 04332802552 ते 04332802522 ते
1: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 04900545596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए

0: सर्विस ले एक ही नाम सन करंट देव रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
1: हांजी हांजी।

0: सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुक दे नी
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी।

जरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविए गुने निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार बती माई जे हो जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सपावा बिन पाने के नाय करी जेती सृष्ट उफाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवाख नाम विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रहाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सके काल नानक।

कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई फलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए, असंख निंदक सिर करे पार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

आसन लोए लोए पंडार, जो कुछ पाया सो एकावार, कर कर वेखै सिर जनहार, नानक सत्य की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी पौ लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईया, कूड़ी कूड़ै फीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय, राती रुती थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कार्त कड़ी है बहुत अनूप, कांकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महामल सूर, तिन मैं राम रिया प्रपूर, तिथै सीतो सीता मैं मामा, ताके रूप न कथने जाए, ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसे के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै का अंत नंत, तिथै लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार, जत बहारा तीरे सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पौ खल्ला अग्न तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित काल, कड़िए शब्द।

कल्याण कान अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछ्य कंस आदि श्री तरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरी चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछज देशय के आभिज वेशय के आगज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशुक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदाम गनी बुल शिकस्ते गरीब उल पलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साक शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबल गवन है, के हमेशल रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीस है, परंग परंग ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेख है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित्व सुभाष है, के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी अनाद।

अंठन अबार आडीठ तरम अत टीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

सब सेती मन मिलिया सच्चै लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए कह नानक सबद रतन है।

तहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर

माया अगन सावी को जाई करता है खेल चाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिप छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी।

स्कूल नहीं गई और बारिश में नहाती रही। भाई हमेशा मुझसे लड़कर मुझे घर में ले जाता था और मैं रोती हुई आकर आपसे लिपट जाया करती थी। बाबा जी, यहां कोई मुझसे लड़ता ही नहीं, बहुत खामोशी। मैं तो आपकी लाडली थी, फिर मुझे इतनी दूर क्यों भेज दिया? अम्मा कैसी, किसको डांटती, चिड़ियों से बातें कौन करता है, बकरियों को चारा कौन डालता है, तुम्हारी पगड़ी में कलफ कौन लगाता है? बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ बाबूजी, लिखा नहीं जा रहा। तुम सब बहुत याद आते, तुम्हारी लाडली।

दिल तलाश करना छोड़ दे, वो मैंने चुपके से अपने बक्से में रख ली। जब अम्मा की याद आती मैं वो चादर सूंघ लेती हूँ और यूं लगता है मैं अम्मा की बाहों में। तुमने जो कलम भाई के पास होने पर उसको दिया था वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा। तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती और तुम सामने बैठे रहते हो। बाबा जी इन्हीं बातों से तो मेरा दिन कट

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: If you can understand when I start Punjabi vich bolna, ta tusi Victoria Police vich naukri karan layi us ton vi vadh yog ho jinna tusi sochde ho. Vadhiya shuruati tankha naal shuru karo ate naukri dauran duji bhasha di varto karke patte kamao. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर. House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock. अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 0433-280-252 ते. Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानो उड़ीक रहा है. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available. आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service. Chadston Ford. Ready, set, Ford.

0: इनी टेंशन क्यों लेती हो रही है
1: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़िया।
0: आज सिम्मी भैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे ही कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपने आदा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते।